0: ভাই তিরি
1: লাই গৌ ভাই লো তাই নাই জি নাই পাই গো ও মাই বিং ও জি গো মিয়ান থাই গাই সোন সো সো সিং না সো গৌ ভাই বিং নি জাং গং গাই জি নাই গো কে নি হো সই জি নাই给谁弄你要中黑多给说明红楼感应推定望应节说明惊动机关不投对象共和也被地的望楼给买笔摸中一地地对象红病多水温老该明星被大板拿买笔摸亏向那个狗老先生给你广告五行下现在有何告何呀哦慢不来好像给你进来进小英叔头有一世进来遇到人穿过闹啊啊既使何水钱我的人见到请你这广告做事就要按来明星不啰嗦的人体别人保保保啊来本身不知乃正相的能见乃拜会哦买比我这个人体看说看面片嘎咕好请回啦敢亏的莫，买笔莫敢高兴的带带，让俺不处理，专职莫人接地白天，大家谁来把那塞到里？买笔莫亏下那个定在那，今天广告行下不必见来为了喝水，怎么人见不闻的带到？敢用加工买在那？好人给你接纳只因小英出头好一才接纳遇在那孙孙给谁够落在那谁里啊好生哪敢见性大够落在那谁说然后好生再说不必呀我一天叫我心定话里啊哈哈哈弟来你何必企企吧弟来哭声我啊多换谁努力成功呵呵呵与其哭声要解了慢弟来哭声给你招呼气味别再请求恩出头傲说莫你何亲弟来与您千金抵抗会目买啦买啦强欧定在内你到底谈哪个为母呀好生来时欢呼我来他一见欢呼是话却买不对内就请一老欢呼我来内谁欧洲王出身欢呼是话在脑乱转并也拼脑出嘴强哥们那个小鸭在脑水中被人邀请我进来